न छोड्नु पर भित्र जाँदा आउँदा साथी भाइ खोज्नु नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।

विद्यार्थी को लगी तीन वर्ष ग्यालरी प्रथम वर्ष को भर्ना खुले कुछ विषय में स्नातक तह उत्तीर्ण कर इच्छुक व्यक्ति निम्न अनुसार भर्ना जानकारी कराइन भर्ना कार्यक्रम को मिति भर्ना के लगी आवेदन फारम वितरण भदौ 1 गते देखि भदौ 30 गते सम्म प्रवेश परीक्षा असोज 10 गते नोटिसा प्रकाशन असोज 11 गते भर्ना मैथ असोज 12 गते देखि असोज 25 गते सम्म कक्षा संचालन कार्तिक 10 गते देखि रजिस्ट्रेशन फारम भर्ने मैथ कार्तिक 30 गते सम्म सब जानकारी का 98150156 98148445 98242487 75 गीता घिमिरे कैंपस प्रमुख कानून कैंपस पल्ली।

नदी वा तालाब में विसर्जन गर्छन्। अब विदेश को खबर। इंडोनेशिया में 7.7 मैग्नीट्यूड को शक्तिशाली

सुनाको उच्च जोखिम में रहकर देश हो। अब खेल खबर, नेपाली पौड़ी टोली ने आज विश्व एशियाली खेलकूद को तैयार

0: गोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Soundcheck. Studio FM. The studio time.
2: It's 8 AM. We have to go best with it.
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुदकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: गोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: सांचे सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 2 पीएम न्यू सपोर्ट 2 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दूध कुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू
2: आदरणीय श्रोता वृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सुन एफएम सुन एफएममा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न नेपाली चलचित्र क्षेत्रका गीतहरू

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब उखेजुला को मिलन क्षेत्रमा।
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
3: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
3: टिकाऊ र भर पर्दो
2: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
3: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लन्च भइरहेको
2: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
3: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुङ्गा र खोटाङ को दिक्कल बजार बाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
3: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
3: अनलाइन बाट बुकिंग गरे भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ।
2: ओखलढुङ्गाको लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गोरुमारे भुजाङ ओखलढुङ्गा।
3: सम्पर्क नम्बर 037590222 9852888002 र 9842803000।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Soundcheck. Studio time. Studio time.
2: It's 4 PM. Aparanna ko 4 baje.
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलुदुकु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु।

घस रखना साँझ पर्दा घर छोड़ी गाँव घूम जानुना बाघ भालू बैरा हाथी चितना पसे पछी।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: टाइम
3: चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलुदुर्कु नगरपालिका 5 सोलुकुम

0: سیدی میتونم باشت بیچار چوکو جالو بیجی بیچار کشمانگو من نده بیدارد
1: सार्वजनिक हित का लागि उज्यालो को अनुरोध अब इंटरनेट ढिलो होइन छिटो स्मार्ट र सुरक्षित इंट्रोड्यूसिंग वाईफाई 6 विथ सुविशु सुरक्षा
2: वाईफाई 6 सँग पाउनुहोस् हाई स्पीड र स्टेबल इंटरनेट
1: साथै सुविशु सुरक्षाले तपाईँलाई राख्छ अनलाइन ब्राउजिङमा सुरक्षित
2: हानिकारक साइट असुरक्षित कन्टेन्ट अनि सबै इन्स्टेन्ट ब्लक हुन्छ
1: सुविशु छिटो पनि सुरक्षित पनि थप जानकारी तथा बुकिङका लागि
2: शून्य 42
1: राप्ती इंजीनियरिंग कॉलेज घोराही दांग को विद्यार्थी भर्ना संबंधी सूचना
3: स्थापना को पहिलो ब्याच में इंजीनियरिंग कार्यक्रम तर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ पांचों ब्याच में गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल ग्रीनविच विश्वविद्यालय लंदन कॉलेज रीडर्स नेपाल द्वारा सम्मानित नेपाल एजुकेशन अवार्ड जापान अस्ट्रेलिया तथा यूएई द्वारा पुरस्कृत लुम्बिनी प्रदेश के उत्कृष्ट इस कॉलेज में बीबीए बीसीए बीई कंप्यूटर और बीई सिविल कार्यक्रम में कहीं सीट खाली रहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूले तुरंत
1: संपर्क गर्नुहोला राष्ट्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज घोराही दांग
3: फोन नंबर 082-562-601 98578-3590 98578-3584 तीन वर्षे डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और 18 महीने अमिन कार्यक्रम में कहीं सीट खाली रहेकाले इच्छुक विद्यार्थीले छिटो संपर्क गर्नुहोला

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकताको आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरञ्जनको अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो अभियान
3: Studio time.
0: It's 7 p.m. Saatko saat baje.
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलुखुम्बु नगर पालिका 5 सोलुखुम्बु

0: सोलु एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: सन्चे सोलु एफएम स्टुडियो टाइम
2: इट्स 9 PM रात को 9 बजे
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: Sound check. Studio FM. Studio time.
1: 10 p.m. रातको 10 बजे.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु.